0: छु रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जीव पेश पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पीको द अनलाथो अष्टमी मदिक वगु वाया हुने वगु चलख छे चुका यङ्कुगुली पेङ्गु छेजपी पङ्गले लागुदो छे जोखिमे लागुली छखा छे या छेजपी त सुरुचित नक्सा मेथ्या चिकुगुदो पाँच थरिया याङ्गोरक लाम्बा खोला या मोहनलाल खबास कबीर खबास ओ कोप्चे या गङ्गा प्रसाद बेघा या छेजपी पङ्गले लागु ख अथे तम्बर खुसी देका चुङ्गु लिम्बुनी ता खुसी बाला चुका यङ्कुगुदो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ता नोया चुङ्गु लकस्यातक या विशेष बुलेटिन जारी यागुदो डेन्यङ्क या तापक्रम स्थिति या विश्लेषण कथम विभाग मिघ बनी जारी यागु बुलेटिन कथ लुम्बिनी प्रान्त ओ सुदूरपश्चिम प्रान्त पहाडी ओ तराई लागा छु थासे अधिकतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस ओ ओसिया अपो जुइको खन हेतना तगोदो पीको डिग्री सेल्सियस बे ओसिया अपो तापक्रम तसक तानोइगु धागुदो विभाग या मौसमविद सञ्चीव अधिकारी कथौँ वैगु सोनुतक लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम प्रान्त या तराई लाग्या मध्यम तापक्रम वा पहाडी लाग्या तानोइगु दि वैगु सम्भावना दुगु वा उकिया लिचो पाखे बचे जित मागु सावधानी छेले त विशेष बुलेटिन इनाप एना तगुदो वैकया कथ सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी वा तराई लाग्या वा लुम्बिनी प्रदेश या तराई लाग्या चुचु थासे अधिक्रम तापक्रम पीको डिग्री सेल्सियस वो ओसया अपो मापन यागुदो थो बाहेक सुदूरपश्चिम वा लुम्बिनी प्रदेश देशिया पहाडी ओ तराई या चु थासे अधिकतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस बेचे लागुदो विभाग कथ सतर्क जुइमागु जिल्ला कञ्चनपुर कैलाली डोटी बर्दिया बाँके ओ दाङ खसा अध्यावधिक जुइमागु जिल्ला बैतडी डडेलधुरा अछाम सुर्खेत सल्यान रोल्पा प्युठान पाल्पा अर्घाखाँची रूपन्देही ओ अध्यावधिक जुइमागु जिल्ला धागुदो तापा वायु वा तानोगु लहर या सम्भावित लिचो गथेकी थाकुइगु कमजोरी जुइगु प्याचा अपुइगु छ स्याइगु तुतु स्याइगु छ स्याइगु बेहोस जुइगु मांसपेसी स्याइगु लोइगु आदि पाखी बच्चे जुइतन विभाग इनाप यागुदो तापा वा तानोइगु लहर पाखी बच्चे जुइत विभाग दक्षिया दक्ले तानोइगु इले अर्थात् ख्वाङ्गु थासे छे दुनी हे चोने त पिने योगको पिहा मोने त तानोगु निभाले पिहा मोने त हल्का ओस पुने त बिहा उनीले छ तोपी त वा तपली पुने त न इनाप यागुदु बुङ्ग दया रथे तया तगु ऐतिहासिक लि पाता बेपत्ता जुग्ने प्रहरी उजुरी लागुदो रथ या जव खव खमा या निगुली थासे चुङ्गु लिपाता मध्ये जवे चुङ्गु लिपाता तना चुङ्गु जिल्ला प्रहरी ज्याकु एसपी गौतम मिश्र सञ्चार माध्यम या त जानकारी ब्यादिको ख वेक कथा वैशाख 24 गते उ लिपाता तना चुङ्गु खबर प्रहरी या त उगु ख रथ या त ह्याकुबले थो विषय मोलहुङ्गु तर रथ या त ह्यारङ्गा छु यी लिपा अभियानकर्ता त्यसँग रथ या उगु बो मधुको खेन हस त अगु ख वया लिपा गुथी संस्थान जिल्ला प्रशासन कार्ड यल पाखे प्रहरी निवेदन दर्ता यासे माले त इनाप यागु ख उगु लिपा त्या कर्कट नाग आकृति खने दुगु व थुकिया त हिति न थागु यासा विक्रम सम्बत 1996 साले युद्ध शमशेर राणा थोपलिस्ता याना थङ्कुगु ख पिहा वगुदु सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सरकार यागु बालागु भिङ्गु ज्याख जनता या त आशा भलसा भ्युगु थाइदिगुदो नुवाकोटे जुगु छगु ज्याजोसँग नापया राज्य या निकाय वा सार्वजनिक सेवा प्रहाले बिचौलिया पिन्स नियन्त्रण या तगुली जनता या ज्या तिसिलाक मजुगु नेतना दिल वैगु न्यादे थो सरकार नेपा या ख्वापा बालसे चोङ्क हिकेगु थ्वाधिका दिल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सामुदायिक रेडियो प्रविधि मैत्री याना जनता या भलसा वो आशा कत ह्याके त ब्यादिगुदो दक्षिण एसिया या हापाङ्गो सामुदायिक प्रसारण सेवा रेडियो सगरमाथा या स्विकगो पलिस्ता दिवस या लसत्या मिग एले गोसागुगु ज्याजोले वेक्ल थथे धाइदिगु ख वेक्ल सकल मनु व बुद्धिजीवी हुने रेडियो महत्व आन हो मजुगुली मर्यादित व लिस बि फैगु याना पत्रकारिता ह्याके मागु खे बह अभियादिल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय उच्च शिक्षा नीति विदेश उनिपिनीको नुदा जुगु शैक्षिक परामर्शदात्री संस्था जग परामर्श सेवा कायत इनाप यागुदो मन्त्रालय नुगु नाथल पिथे उपी पाखिन्चक सेवा कायत उज बिगु ख तलकत चिन पेस व ने गुगु संस्था या नुदा जुगुदो शैक्षिक परामर्श लागा शुद्धिकरण या नीति शिक्षा मन्त्रालय व प्रहरी या ग्वाली देनिङ्क अभियान ढ्याका चुङ्गुदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी या सचिवालय मुज्या थथगु नुग खु ज्या जुया चुङ्गुदु नेकपा एमाले नेता लेखराज भट्ट या कथा पार्टी नायक केपी शर्मा ओलिया निजी छे गुन्डी जुया चुङ्गु मुज्या मु छ्यान्जे ओ सोमो ल्यु मु छ्यान्जे न्यामो छ्यान्जे पिन्छ थथगु नुग खे थङ्गुगु वेक्लो खनादिल जेठ चार गते सोमबार निसे मुज्या चुना चुङ्गु ख नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गकुन कुमार थापा भदौ 23-24 गते या छाकाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तयार यागु निवेदन याक्न पिथने त इनाप यानादिकुदो मिग विराटनगर सञ्चार कर्मी पी नाप खलनादिसे वेक्ल याक्न थो झाका त दुवाले त न्यायिक आयोग निसुनेमा गुखे ब व्याधिल वेक्ल पार्टी दुने या पङ्ग या त जेङ्का या हुनेगु व पार्टी त छप्प छदि या त कुत जुया जङ्गु हेतनादिल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव ताइलनिसे तिना तगो हेटौडा काप उद्योग हान च्याके त कुत जुया चुङ्गु नेतनादिगु दु हेटौडा औद्योगिक लागा स्वेगु झोले मन्त्री यादव थथे थैदिगु ख वेग्ल सेने त सङ्गु हेटौडा काप उद्योग या त न्याके फुसा देशे आर्थिक विकास जुइगु लजगाय होता पोलनिगुली आर्थिक द या बजेटे थेबा फ्याना च्याकेगु बचम ब्यादिल थो झोले हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन ज्याको या प्रमुख संगीता कुवर औद्योगिक लागादुनी ह्याना चुङ्गु विशेष कनादिल नेपाल टेलिकम डोल्पाया छार्का ताङसोङ गाउँपालिका या केन्द्र काकोटे 4G सेवा ह्याकुकुदु समुद्री सतह स्वे पी निस मिटर चुए या मुकुट या टावरे 4G उपकरण चढानेना माइक्रोवेभ रेडियो पाखे 4G सेवा ह्याकुगु नेपाल टेलिकम प्रवक्ता डाक्टर कमल लामिछा नै धाइदिएको ख आ डोल्पा जिल्ला या डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका ओ से फोक्सुन्डो गाउँपालिका ओ मनाङ्गा नार्पा भूमि गाउँपालिका टेलिकम या 4G सेवा थ्याङ्की त कुटो जुया चुङ्गु न वेक्ल कनादिल नेपाल मेडिकल काउन्सिल थगु नयाँ झने कानुन अक जुइक छेला तगु डाक्टर डा खङ्गो सिके त उज बिगुदो काउन्सिल या निमित्त रजिस्ट्रार डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे न्यागुए विधा या स्वास्थ्य कर्मी व मनोख थगु नयाँ झने नियम या अक डाक्टर खङ्गो छेलिगु याना चुङ्गु लुया व गु कनादिसे उगु डाक्टर खङ्गो झिन्ज्यानुदुने सिके त इनाप यानादिको ख काउन्सिलले दर्ता जुया चोपी चिकित्सक नापौँ थगु विधागत परिषद एन पाके चिकित्सक उपाधि कया तपी बाहेक मेपी स्वाप पुदुगु परिषदे दर्ता दुगु व मधुगु न्यागुए विधा या स्वास्थ्य कर्मी व मुनुख थगु ना या झने अवैध व नियम या अख डाक्टर खगो छेले दैमुखुतका वेक्ल थैदिल काउन्सिल नेपालले आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत बिरामी या उपचार यागु परामर्श बिगु व ना या झने डाक्टर चिकित्सक पद छेलेगु कानुनी अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिल एन 2020 कथ काउन्सिलले दर्ता जुपी चिकित्सक तेक जग दुगु वेक्ल जानकारी ब्यादिल वेक्ल आधिकारिक भो प्रशिक्षण प्याड क्लिनिक या साइनबोर्ड भिजिटिङ कार्ड नापो फुक सामाजिक सञ्जाल पाखे अजागु अवैध व नियम या अख डाक्टर तैपिन्त थथे मते त उज बिहादिल काउन्सिल न काउन्सिलले दर्ता जुपी चिकित्सक बाहेक मेपी ह्याकुए विधा वा परिषदले दर्ता जुपी वा मजुपी मनुया ना या झने डाक्टर डा उपाधि छेला आधुनिक चिकित्सा या भ्रम सिर्जन या त धासा वा आधुनिक वा सिफारस यागु लुयाउल धासा काउन्सिल या यन कत सोधतक कैद व सोध दा जरिमाना पुली मागु नेतना तगु ख काउन्सिल स्वदेश विदेश या थिति विश्वविद्यालय दसिपौले डाक्टर खगो नेतना तगु शैक्षिक उपाधि ता लाकेगु या अर्थ स्वतन्त्र रूप चिकित्सकीय अभ्यास यागु अनुमति स्वत दैगु मखु थागु ख चिनिया कोइला खानी छाका लाना गुइम सिगु दुधासा गुम आन तनाचङ्गुदु उत्तरी चिनिया साम्सी प्रान्ते छाका जुगु इले निसौ पी हेम ज्यामी ज्या यानाचङ्गु ख उपी मध्ये सच्ची ज्यामी तेत सुरुचित लागा यङ्कु गु दु विषाक्त ग्यास दुगुली उपी खापा जुगु ख अमेरिकाय राजधानी वासिङटन या हाउट व्हाइट हाउस लिक जुगु गोलीकाण्डे छम मुनु खापा जुगु दुधासा गोली केकु म संदिग्ध मुनु सिगुदु झाका जुगु इले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस दुनिहे दि झोला ल्वाब पिकना गोली के धुने ढङ्का प्रहरी ओ ल्याम या त लिस ब्युगु ख गोली लाम ओ ल्याम या त अस्पताल यङ्कुबले चिकित्सक सिगु घोषणा यागु ख राष्ट्रपति ट्रम्प या सुरक्षा ओ ज्या धल धासा छुन लिचो मलागु धागुदु थौ कोशी बागमती ओ गण्डकी प्रदेशे खसु खनिदैगु धागुदु सुदूरपश्चिम ओ लुम्बिनी पहाडी लागे क्वागुफे ओ तराई लागे क्वागुफे बोइगु धागुदु मधेस ओ कोसी या तराई लागे मो लागे वाफे वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु मिग सुइगु सिवे अप क्वाजो सुनिगुले लुगु ख थौ ओय ल्याख क्वाजो लुइगु तुकमा यागुदु नेपाल भाषा बुख कोचाल शुभे
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार

जो निनामी भाजु मेजु पिन्छा सा लसकु सद्दु हले जो जल पाद्य छ सेन्जी रुबी श्रेष्ठ सधाया आइतबार थे थौ न वे जुना प्राविधिक पासा मोहम्मद असलाम या ग्वाली स थो ज्याचो न्याका सोनागु जुल अले थो ज्याचो या त माया मती नयाँ चिसोना ने नाचोना दिगु दु जी धैगु आशा भलसा जिना कया जना अले थो आशा भलसा जोना थौ यागु ज्याजो पोङकेगु तातुना कथ थौ यागु फोन लिया ब्याचना फोन लिया ख 42,11,736 अले निनामी भाजु मेजु पिन छि सेसु ज्याजो नाका यु पाह गुनु गस अले थो यु पाह गुनु गस ज्याजोले थौ दस मे ने ने अले थो मे दस चिसन देसना दिपु मेगु ख मलाई चिची हाक बचा बचा हाक चिसन थ त यो पि मनुते गुना कया दिस सुइता देछा गुख वो पोङका दिस अले यको ख मलाई से यको पासपिन त थौ दस लस कुस यागु तातुना दु किन्तु तातुन्या त अवश्य नै चिसन ग्वाली बिया दिजी दिगु आशा बोला सक्का से थो ज्याजो छिसँग लिनेङ्क चोना नानिना दिफु उक्यानी तिन छिसँग www.radionepal.gov.np व www.radionepalonline नापा रेडियो नेपाल या हे फेसबुक पेज व 98.103 मेगा हर्स छिसँग एफएम पाखे नेपाल न्याङ्क चोना दिफु दास जलाखला दे पाखेना वेबसाइट पाखेना निना दिफु अले मिडी वे पाखेना निना दिफु दास निनामी बाजे मेजुपी आधा शतकले नापा झिनेवातेको राष्ट्रिय मेने ने मे नाप्नापा चितलसको सयाना चोने अले जिन्दैगु ख छिसँग अवश्य न निना जी थुल जितेको आशा बोला सकासे चिन्यवा तेगु राष्ट्रिय में

0: जो हुन्थे नामी भाजु मेजुपी राष्ट्र छ झ्याके गुनी ती छिगु चति छिगु हि छ झ्याके दैगु थो बच बियाचङ्गु मे छित निङ्के दुन अवश्य न थो मेन छित यलजी अले थो मे निने धुङ्कानी छिगु हि न क्वाल क्वा तजी अले छिगु नुग्ले न अवश्य न झिगु दे या ता थक चति पापी हि पापी सहित खापा जुपी अले बेपत्ता जुया चौपी मनु ते न लुमा वोलजी अवश्य न वैकपी सक्कल ज्ञात अज्ञात सहित बेपत्ता जुपी सक्कसित न हना दे अले वैकपिन त छौकथन ध्यागु खसा सलाम न या मुखला वैकपिनी गुहे हिउपा न वैकपिनी गुहे बलिदान झिगु देशे थिति कथयागु हिउपा वगु खथो हिउपा या गुहे ज दुने झि थिना सनागु जुल जित थते चिता न अवश्य थे थिथि कथया गु खत वैचुङ्गु दु जुइमा नुग्ले छादासा झिगु नुग्लला सदा खला नाय चुनि तर ख छु लै दैगु जग पागु ख अलि यकु खला त किला हान उए जी उके वे मजी कथ खलानु तासे अले निनामी भाजमे जुपिन थौ जी थिथि कथया गु मे त जना वैगु दु डुइट मे निसि या कचा हाला त गु मे अले थु मे थन पाखे ठेके त जिंकु तयाना चनागु जुल अले थु मे ठेके गु पाखे चित न थो मे यगु खसाले सुता देशा मास्ती वगु ख वैकपिनीगु नाजग कया दिसा यिको तहाक कया दिमते अले यिको पास मिन्ता त बनेगु कुतना याना चनागु दु सकसित लस्कुस दु दासे फोन साथ दिमा पासा त लस्कुस ए हजुर हेलो हेलो हजुर हेलो नो साउन्ड हजुर हेलो
1: नकर्मी चन्द्रबहादुर साके विश्वनाथ श्रेष्ठ जुदुभाइ साके मेपी भोटिका रूपरत्न साके पुनर्बहादुर साके
0: खोपे फनियानदीमा गोपाल भीमी ज्यू या त बिदा याद हुन अहिले चासा निनामी बाजु मेजुपी चिसेर नेना चनादीको दुसा याक्न याक्न फनियाना दिस थौ अहिले छि त थन पाखेन थैगु मे सुत देसा नदीगु खुन चिस धै दिसा दासा अहिले बानलागु चुन कथ्यागु ज्याओ यो हे दुख जागु बिजा हाकेगु छु ज्यागु झाका जुगु दुसा हुन कना दिस नत्र धासा यो पासपिता बुनेगु तातुना खौ उकिन्थ्यो तातुना त चिसङ ग्वाली बिया मतिना याना दिजी दिगु आशा बलसा कासे आदर्श छपु मेन देसा मेन आफ्ना पछि तलस्कु छ याना हेचो ने दासे थ्यो मे छिगु नि दिएँ

0: जो निनामे भाषा में जो पी चीस निनाय दिलो उपमा मिशा धई गुमे ख उजला मर्जन जीवन हलदी गुमे खो अले थो मे निना अवश्य न नारी शक्ति धई गु मिशा ते गु नुगले चाहो कथ या गु शक्ति अवश्य न बोलो न जी अले मिजन ते सन अवश्य न थो खया त ये का दिल जी धई गु आशा भलसा जिंक या छ निनामे भाषा में जो पी ते भलसा ना पम फोन शब्द दिमा पासा त लस्कु सेना छ न हजुर हेलो हेलो
1: हजुर
0: अलि ऊ छुट्याइ मधेस हो तराई लागेला मन त बिहोस या चङ्गु दुधै गुन खाऊ गुदु ला फे चाहिने चले जु या चङ्गु दुई गु मौसम बित्ति सधैँ चङ्गु दु ओकिन सक सीता नबी सया कामना नन्दु अलि चन्द्रबहादुर साके ज्यू थन थन पाकिन थै गुमे सुइता देसा नदी छु धे माघु छु
1: राजेन्द्र नकर्मी विजयलक्ष्मी नकर्मी दल गोपाल भूमि दल मङ्गलाहरू सुन्दर श्रेष्ठ दल रूपरन साक्य दल किरण खर्गी दल मङ्गला माधव रत्न दल सूर्य शिलाकार दल ती छोतनी फुक्क छिनामी बी सुना सुना मस्यो
0: जो वेक ख चन्द्रबहादुर सके यति नानी ये ल पाख्याले निनामी बाजामे जो पनि छिम फोन याना दिगु खस फोन ल्याख 42/1121/42/1136 अहिले थियो फोन ल्याखे चिता पिया चोनागु दु दासे फोन स्वाप्ति छिसा एक न एक न फोन याना दिउसम्म पाथौ छा दस जिनीमा सियागु फोन कया मे थेके दैगु ख छिउ फोन दस बुलु जको वइ चुङु थे ता उगी एक न याना दिसन छुम्म पा दासे आ न छपु मे देसा मे नाप्रा पछि तलस कुसे याना चोने दासे थुमे छिउ नि दिए

0: जु न्यानामी भाजु मेजिपी छिसा न्यानाहा दिल मे ल मे ल दैगुमे अहिले विष्णु वे जु रत्न स्वभाव महर्जन या सले दुगु थुमे ख अले थुमे या उले ज्या परमेश्वर साके जिउ नयाना दिगु ख मु पा कथा दासा थो ज्याजो या उले ज्या ज्याजो न्याके त जिना वनागु ख थो ज्याजो न्याका गु ख जि दासा अले थु मे या प्रोडक्सन दासा के बी हाउस न यागु ख थो चाहिँ जिन छु जानकारी जुले जिम बिरु न मेगु दासा जिम मछु अले उकी जि पश्चिम फको कलाकार पिन्ता उकी ज्यायगु टिम या त अन्य मुजी मन्दका जि सिगु चागु नाचा जि कनाचना गुदु अले आ बाबा लागु नि वातेगु मेन वैचुङ्गु दु थुजा थुजा गुए बाबा लागु मे ओया चाहिँ फेमा दैगु मनन्तुवा ओ लसना नन्दु अले निनामी भाचो मेजु पिन्छि सन्याना चना दिगु जाचो खो पा हगुनु गस ज्याजो अले थो ज्याजो पाखेन जि थे कचनागु थिति मे त दस थो ज्याजो पाखेन चिसना थ थिति पि निसे कया पास पिन्ता थु मे थे कचना दिगु दु देसना चना दिगु दु उख्या नि थे कु सुभा दास निनामी भाजु मेजु पि अले थो मेन धाते हे मिसा तै पि छौ कथा दासा मिसा बाँलासा छे भिनिना यो सेने न यो थाइ तर ए मखु निमा उति कहे मिले जुइमा निमा मिले जुया मतिना अन्डरस्ट्यान्डिङ डेगे फत दासा अवश्य नै छे स्वर्ग जुइ दासे फोन सर्वेदीमा पासे त लस्कुसिया हजुर हेलो
1: हेलो जुजलपा
0: जुजलपा जाजो लस्कुसो दु गन्न सुनाना दिया थे ये ल खोना दैदिउ ख
1: विष्णु
0: खोपेचमा
1: पुनरत्न
0: जी छिनापा बा सुभा जय मा हजुर निनामी भाजु मेजुपी जिउ पाखेन दासा रेडियो नेपाल यता माया मतिना याना निना दिना दिया चोपी दे दुने पिने चोपी सक्कल भाजु मेजु नेपामे पिन्ता आ थैगुमे देसना सोना

जो निनामी भाजे मेजु पि बुङ ज्यो या जात्रा नाप्ना पा मतिना या मे स्वागु थोमे हाला दिगु ख आर्सिया रञ्जित निर्वाण महर्जन जिउ न अले थन नुगु मे हे जुल थ यु नुगु मे थ्वेकागु ख जि निनामी भाजे मेजु पि थ थौ तग रेडियो नेपाली मथोगु मे ने जि थ्वेकागु ख दासे अवश्य न चिता ये ल खनि लस्तान जा ल लसना देसना सना चिता अले निनामी भाजे मेजु पि थते माया मतिना या ना चना दिस छ गु पिनिगु माया मतिना हे थ ज्याजो न्यो जाना चंगु दु धासे गोपाल भूमि खोप कमल विनायक पाखे दासा रतनलाल श्रेष्ठ नेवा सूर्य विनायक खोप पाखे चन्द्रबहादुर साक्य इतिनानी येल पाखे राजेन्द्र नकमी लुही टिए पाखे सुरेश राज भण्डारी खोप पाखे बुद्धसिकमी जु ख थुम्बा ख ये पाखे इमाडोल पाखे ख पूर्ण रत्न साक्य जु अरे चन्द्र बहादुर साक्य जु जी येल धल्ला मदल्ला पचास जना गेथे गेथे जु ल अले अवश्य न थौ सोनी गयु गु बोती चाहिँ दत तर मिसा मेजु पनि गु अले आछु डागु जेन्जी पनि गु न बोती दुसा माला दगु जिगु आशा बोला साख जेन्जी व मिसा मेजु पिसन बोती कया दिस छि सक सियागु नीति छि सक सियागु नीति थु जाचो ख तासे त गुल्ना पास पिसन जिमी गु अनलाइन अले रेडियो नेपाल फेसबुक पेज निसे कया जिमी गु 98103 मेगाहर्ज थो जासो नेना दिल वेक अप सक सित इकु इकु लसना देसा से थो जाचो पि न्यागु मिनेट तक ह्याके त जिता प्राविधिक कथा गली बियाचना दिमा प्राविधिक पासा मोहम्मद असलम या त एकै कुसुबा देसा से अले थया थो ज्याजो पाखे दक्ले लिपाङ्गु मे सचिका चिना धेगु मे निबा डङ्गोल्या सले हला त गुथु मे चित देसा से थया थो ज्याजो पाखे जि रुबी न बायवना चुना छिगु दि भि जुइमा अले सकल सित भि उसाया कामना न याना चुना धासे जय मा भा सुबा।

सु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिरी राङ्नी दा ढेनमुला गा इन्दिरा थिङ स्यार्थेन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेल से फिरक्याप हुला विश्वविद्यालय तेन सम्बन्धन किन्बा क्याम्पस दा नियमन लाबारी छार ठिम बाबारी माइबन मुला बिसी सुङबा मुला तिनी याम्बुरी सेङबा गेखोरी लेङ्गो थान्सुबान ब्लोन पोखरेल से फिरक्याप हुला विश्वविद्यालय तेन सम्बन्धन मुबा क्याम्पस कादेला ताम्री लानन गुनासो खाबासे चुदा काबारी ठिम बाबारी माइबा हिन्ला बिसी सुङबा मुला स्यान्दो हुला विश्वविद्यालय सम्बन्धन क्याम्पस दा खारङ लासी सम्बन्धन पिनबा खाजुदा आपिनबा थेन नियमन खारङबा ताबा भिबा ताम्री निमाओली ग्याम स्पष्ट लाबा बिची ब्लोन पोखरेल चे सुङबा मुला तिनी याम्बु निर्वाचन थुम नम्बर घारी सेङबा गेकोरी लेङ्गो थान्सिबान ब्लोन पोखरेल से मिनी कादेला समस्या दा गोसी दातेला सरकार से गे लाबा बिची सुङबा मुला सरकारला सुङबो नुन मुबा ब्लोन पोखरेल से मिनीला ताम थेसी जेखेन गे लाबा तेला सरकारला नितिन मुला बिसी सुङबा मुला खानी थेन खानी जान्या सेकादे ग्याम खाबा करोड निचुई सोम लाख निचुई निस से तुङ ब्रेचुई ब्रेछ्यो आछ्योला रोयल्टी योनान किनबारी महालेखा परीक्षकला गेजाङ से पाङबा मुला महालेखा परीक्षक गेजाङला डुचुई सोमछा तिदिङ प्रतिवेदन अनुसार दिङ गिक बिमा लाना दुई दोना उत्खनन लाबा रोयल्टी आपिनबा थेन अनुमति याङबा बिमा लाना तेबा स्याप्पा मुला खानी थेन खानिज से ठिम अनुसार खानी ग्याम तेबा खनिज से च्यासी रोयल्टीला टाङ्गा ला थुम्बा हप्ता नाङ्री राजस्व खातारी थान्दोबा मुला तोग्लाबा धुइरिन रोयल्टी आपिनसाम सोमचुई प्रतिशत धोना जरिमानाला टाङ्गा फादोसेदा मुला पोखरा महानगर पालिका से बजार ला घुङ्ग्यामा भ्योङबा फिर्के स्योङला नाम्री ठिम्दा नाङ्सी शोभा दिम टहरा कादे तिनी हेन्से फुप्पारी तिबा मुला चुङाछा महानगर से सार्वजनिक सारी शोभा दिम टहरा कादे हटाई दिबारी पिनबा सोमची घाराला दुई तिलमा झिन्बा मुबा महानगर से निबा वैशाख सोमला कुनो सार्वजनिक सारी शोभा दिम टहरा हटाई दिबारी पाङबा मुबा खोला घारारी चिबा कादे थेन दिम तहरा कादे सोबा मिनी थेन गेन्दुन्दा गाछन्

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। महतारीको लोहरपट्टी नगरपालिकामे अवस्थित गेरुका धाममे मलेमास मेलामे आइ तेसर दिन भक्तजन सभक भारी भीड़ देखल गेल अछि। लगभग तीन वर्षमे पड़वला मलेमास अर्थात पुरुषोत्तम मासक अवसर पर लागैत गेल एहि गेरुका धाम मेलामे स्नान तथा पूजा पाठ कनिहारक लेल धनुषा महतारी सरलाही सिराहा सहितक अन्य जिला तथा भारतीय क्षेत्र सँ भारी संख्या में भक्तजन सब आयल करैत अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के वार्ड नंबर 21 कुर्था संग जोड़ल गेल एहि ठाम में रहल प्रसिद्ध गेरुका नदी में मलेमासक अवधि में स्नान कर ओहि ठाम स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा पाठ कला पर विशेष फल प्राप्त हेबाक जनविश्वास भेलाक कारण लाखों भक्तजन सब गेरुका धाम पहुँचल करैत छथि। मलेमास में पड़वला मासक प्रत्येक रवि दिन तथा मंगल दिन गेरुका धाम में मेला लागल करैत अछि। मेलाक व्यवस्थापन में लोहरपट्टी नगर पालिका तथा मंदिर व्यवस्थापन समिति कैल करैत अछि। मलेमास अर्थात पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णुक पूजाक विशेष महत्व रहल जनकपुर धाम वार्ड नंबर 8 के पंडित मदन झा जानकारी देलनि अछि। उपसभामुख रूबी कुमारी ठाकुर अपन सांस रहबा धरि दहेज प्रथा अंत करबाक लेल संघर्ष जारी रखबाक बात बतौली अछि। सरलाही के चंद्रनगर गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित गौचरण में आई आयोजित बाल विवाह तथा दहेज प्रथा उन्मूलन संबंधी बृहत सभा के संबोधित करैत उपसभामुख ठाकुर दहेज प्रथा अंत के लेल हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ बेटा बेटी बीच होबय वला विभेद अंत कऽ बेटी के शिक्षित बनेबाक लेल अभिभावक सँ आग्रह कयलनि। जा धरि समाज दहेज मुक्त नहि होयत ता धरि ई अभियान नहि छोड़ब ओ प्रतिबद्धता व्यक्त कयली। उपसभामुख ठाकुर बहुतो बेटी भेल परिवार के समाज बोझक रूप में देखब गलत सोच एखनो कायम रहल उल्लेख करैत एहन मानसिकता परिवर्तन कयल जेबाक बात बतौलनि। ओ स्वयं पहिल बेर संसद में दहेज प्रथाक विषय उठाओल स्मरण कहित दहेज उन्मूलन अभियान में सभक संग आ साथ सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखलनि। ओ विवाह क्रम में बर पक्ष भोज भतेर सलक विभिन्न बहाना में आर्थिक दबाव देल गेल उल्लेख करैत दहेज मधेशक भारी सामाजिक रोग रहल बतौलनि। स्वयं गरीब परिवार से आयल स्मरण करैत उपसभामुख ठाकुर शिक्षा सफलताक मुख्य आधार भेल बतौलनि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल नागरिकक तमाम सरोकारक विषय के सरकार क्रमशः संबोधन करैत जेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 में आई आयोजित सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में ओ स्थानीय जनता द्वारा उठाओल गेल सड़क ढल बिजली पेयजल सहित समस्या समाधानक लेल स्वयं अधिकतम पहल करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओहि निर्वाचन क्षेत्र सँ निर्वाचित सांसद व मंत्री पोखरेल निर्वाचनक दौरान में मास में एकटा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम करबाक घोषणा कयल अनुरूप आइ काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित विशाल मिलन केंद्र में पहिल सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम शुरू कयलनि। सरकारक प्रवक्ता सेहो रहल मंत्री पोखरेल नागरिकक बात सुनकर मात्र आगू बढ़बाक सरकारक नीति रहल स्पष्ट कयलनि। ओ शिक्षा मंत्रालयक संगे सरकारक प्राथमिकता एखन धरि भेल कार्य सम्पादन संबंध में स्थानीय के जानकारी करौलनि। मंत्रालयक कार्य प्रगति विवरण सुनबैत मंत्री पोखरेल देशभरिक सब सामुदायिक विद्यालय के भौतिक पूर्वाधारक मूल्यांकन के दोसर वर्ष प्राथमिकताक आधार पर बजट विनियोजन सहित अन्य स्रोत साधन के सुनिश्चितता कयल जेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। इससे पहले सब विद्यालय के समाज बजट पठबैत काल समस्या उत्पन्न भेल कहित ओ दोसर वर्ष कौन सामुदायिक विद्यालय के कते बजट चाहिए वही अनुरूप बजट पठेबाक उल्लेख कयलनि। उद्योग

ई बनेबाक लेल लाग पड़ल। एहि वर्ष समय में किसान के आवश्यक पड़वला मलक आपूर्ति करबाक लेल सरकार आवश्यक डेग उठा सकल जानकारी दिलन। अवलोकन के क्रम में मंत्री यादव बीरगंज भंसारक आयात निर्यात प्रणाली, भंसार जांच प्रक्रिया तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन के विषय में भंसार कर्मचारी तथा व्यवसायी सब संग आवश्यक छलफल तथा परामर्श सेहो कयने छलथि। मंत्री यादव के व्यवसायी सब बीरगंज भंसार में सवारी साधन जांचक लेल एक्सरे प्रणाली के आवश्यकता के संबंध में ध्यान आकर्षण करौने छल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव लंबा समय से आर्थिक संकट से जूझैत आयल हेटौड़ा सीमेंट उद्योगक आय निरीक्षण कयलनि अछि। कोनो समय बंद होबयवला आ कोनो समय संचालन होबयवला नियति भोगैत आयल ई सीमेंट उद्योगक व्यवस्था अवस्था बुझबाक लेल मंत्री यादव आई उद्योगक निरीक्षण संग व्यवस्थापन आ कर्मचारी सब संग छलफल सेहो कयलनि अछि। उद्योग निरीक्षण पश्चात आयोजित छलफल कार्यक्रम में मंत्री यादव सरकारक स्वामित्व में रहल सीमेंट उद्योग बंद होयब अत्यंत दुखद भेल बतौलथि आ चर्चाकृत सरकार बंद रहल सब उद्योग संचालन करबाक तैयारी में रहल बतौलनि। सरकार हेटौड़ा सीमेंट उद्योग के समस्या के गंभीरतापूर्वक लेल गेला कारणे जल्दीए सब समस्या समाधान कर नियमित संचालन के वातावरण बनेबाक मंत्री यादव बतौलनि। कार्यक्रम में हेटौड़ा सीमेंट उद्योगक नियमित महाप्रबंधक श्री नारायण साह मशीन पुरान जीर्ण भेलाक कारणे समय समय में बिगड़ित गेल आ आर्थिक संकट के कच्चा पदार्थक आपूर्ति नहीं भ सकला पर उद्योग बंद भेल जानकारी दलनि। मशीनक मरम्मत संभार का समय समय में सीमेंट उत्पादन करित एला पर पिछला समय कच्चा पदार्थ के आपूर्ति नहीं भ सकला पर उद्योग बंद कर पड़ल जानकारी देत निमित महाप्रबंधक सा आर्थिक समस्या के कारण कर्मचारी सबके 11 मास तलब भत्ता उपलब्ध नहीं कराब चुकल, कच्चा पदार्थ आपूर्तिक लेल पुरान बकेवता नहीं तिर सकल आ ओ नहीं तिर सकला कारणे बिजली महसूल भुगतानी करवा सहित समस्या सब अवगत ओ करौलनि। तत्काल देखल गेल आर्थिक समस्या के समाधान कर सकला पर उद्योग नियमित संचालन कयल जा सकबाक हुनक कथन छल। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे विश्व राजनीति में देखल गेल विद्यमान परिस्थिति में नेपाल संतुलित कूटनीति अपनावित आगू बढ़वाक बात बतौलनि अछि। गणेशमान फाउंडेशन गंडकी प्रदेश समिति द्वारा आई पोखरा में आयोजित समसामयिक भू राजनीतिक विषयक अंतर्क्रिया में ओ शक्ति राष्ट्र बीच भऽ रहल द्वंद्वक कारण विश्वक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित रहल बतौलनि। विश्व परिवेश तीव्र रूप में परिवर्तन भऽ रहल समय नेपाल संतुलित कूटनीति अपनावित आर्थिक सामाजिक आ राजनीतिक स्थायित्व कायम कयल जयबाक बात पर जोर दैत मुख्यमंत्री पांडे कहलनि राष्ट्रीय हितक संरक्षण के लेल संपूर्ण नेपाली एकताबद्ध होयब अपरिहार्य अछि। फाउंडेशनक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा नेपालक स्वतंत्रताक आंदोलन में गणेश मान सिंह द्वारा कयल गेल योगदान अतुलनीय रहल बतौलनि। व्यक्तिगत स्वार्थक पश्चात नहि लायक सिंह द्वारा कयल गेल त्याग समर्पण भावी पुस्ताक लेल सेहो प्रेरक भेल हुनक कथन अछि। कोसी प्रदेश सभा के आजुक बैठक में कोसी प्रदेश सरकारक आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए प्रस्तुत भेल वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पर छलफल शुरू भेल। प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पर छलफल प्रारंभ कयल जाके कयल प्रस्ताव में सभामुख अंबर बहादुर बिष्ट द्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत कला पर सर्वसम्मति से स्वीकृत भेलाक बाद छलफल प्रारंभ भेल। आजुक बैठक में प्रदेश खेलकूद पहल संशोधन अध्यादेश 2083 स्वीकृत भेल अछि। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी वरिष्ठ गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठ के विशेष सम्मान करवला भेल अछि। गुठीक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर वासुदेव त्रिपाठीक सभापतित्व में सम्पन्न गुठीक साधारण सभा सँ ई निर्णय कयलक अछि। बैठक गीत संगीत आ गायन दिशक एहि वर्षक पुरस्कार सेहो घोषणा कयलक अछि। गुठीक सचिव दिनेश अधिकारीक अनुसार गीत रचना दिस डॉक्टर नवराज लमसाल, संगीत रचना दिस किरण करेल, गायन दिस बिमला राय के पुरस्कार प्रदान करवाक निर्णय कयलक अछि। गुठी एहि वर्षक लोकप्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार सारिका घिमरे के प्रदान करवाक निर्णय कयलक अछि। गुण भूलियो पीतल को सुन पायो होला बोल को गीत रचना संगीत आ गायन के लेल घिमरे के ई पुरस्कार प्रदान कयल गेल। पुरस्कार आ सम्मान गुठी के संस्थापिका तथा गीतकार स्वर्गीय रमोला देवी शाह छिन्नलता के जन्म तिथि आबयवला 9 गोटे हरिशैनी एकादशी के दिन प्रदान कयल जयबाक गुठी जनौलक अछि। खानी तथा खनिजन पदार्थ से प्राप्त होबय वाला 23,77,88,000 बराबर के रॉयल्टी तत्काल असूल करबाक लेल महालेखा परीक्षक के कार्यालय निर्देशन देलक अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय के 63 वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि धरि उत्खनन बाबत के रॉयल्टी नहीं बुझाओल अनुमति पावला से अधिक परिमाण के उत्खनन कयल पाओल गेल अछि। साधारण पत्थर रॉयल्टी दर प्रति घन मीटर 25 तथा नियम बमोजिम 30% जरिमाना 10% स्थानीय विकास शुल्क सेहो रकम असूल करबाक लेल कहल गेल अछि।
आबन

अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तानक अशांत दक्षिण पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान में सैनिक कर्मचारी ओकर सबक परिवार रहल रेल के निशाना बनाकर रवि दिन कैल गेल शक्तिशाली विस्फोट में लगभग 24 गोटे के मृत्यु भेल, 50 से अधिक घायल भेल। एक वरिष्ठ अधिकारी आज ई बात बतौलक। प्रांतीय राजधानी क्वेटा निकट रहल ई आक्रमण पश्चात घटनास्थल में भारी क्षति पहुँचल। रेडियो नेपाल से सुनने छलहुँ, मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: यही रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने बाजुरा और हुमला जिलों की सीमा संबंधी अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित की समिति। बंद पड़े सभी उद्योगों को फिर से संचालन में लाने की तैयारी में है सरकार, उद्योग मंत्री गौरी कुमार यादव का कथन। सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कर बनाए गए पोखरा के फिरके नदी क्षेत्र की संरचनाओं को हटाने का अभियान शुरू। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 24 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने बाजुरा और हुमला जिलों की सीमा से जुड़े तकनीकी पक्षों का अध्ययन कर प्रतिवेदन पेश करने के लिए नापी विभाग के उप महानिदेशक सुशील डंगोल के संयोजकत्व में समिति गठित की है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा संघीय मामला एवं सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल की अध्यक्षता में आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने ये निर्णय लिया। समिति में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, गृह मंत्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय, भूमि व्यवस्था मंत्रालय सहित कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद कार्यालयों से एक एक प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे। नापी विभाग के एक निदेशक को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने हुमला और बाजुरा जिलों के नागरिकों से संयम बरतने की अपील की है। मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हुमला और बाजुरा के सीमा क्षेत्र में हुई घटना की सत्यता की जांच के लिए पुलिस वरिष्ठ उपरीक्षक के संयोजकत्व में एक जांच टोली गठित की गई है। मंत्रालय ने आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा और सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के सचिव के संयोजकत्व में रक्षा सचिव सहित सभी सुरक्षा निकायों के प्रमुख एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज आयोजित आकस्मिक बैठक ने जांच टोली गठन का निर्णय लिया। टोली को तत्काल घटनास्थल पर रवाना होकर प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्रालय पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया और हुमला तथा बाजुरा दोनों जिलों से नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल की विशेष टीमों को घटनास्थल पर परिचालन किया जा चुका है। पोखरा महानगरपालिका ने शहर के बीचों बीच बहने वाली फिरके नदी के क्षेत्र में बनी अवैध संरचनाओं को आज से हटाना शुरू कर दिया है। महानगर प्रमुख धनराज आचार्य ने बताया कि सार्वजनिक भूमि अतिक्रमित कर बनाए गए ढांचों को हटाने के लिए पहले ही सूचना जारी की जा चुकी है। इसके बाद आज से 3 स्थानों से अभियान चलाकर क्षेत्र खाली कराने का कार्य शुरू किया गया है। सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद कुछ संस्थाओं ने अपने ढांचे स्वयं खाली कर दिए हैं। महानगरपालिका के अनुसार फिरके नदी क्षेत्र में 97 अस्थायी और 35 स्थायी संरचनाएं बनाई गई थीं। इसके अलावा नदी के ऊपर 10 अस्थायी और 18 स्थायी संस्थागत संरचनाएं भी पाई गई हैं। सुकुम्बासी बस्तियों को हटाए जाने के बाद काठमांडू महानगरपालिका ने इस वर्ष नदी जनित आपदाओं की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई है। महानगरपालिका वार्ड नंबर 11, 14, 31 और 32 के आसपास नदी किनारे बसे लोगों को हटाए जाने के बाद बाढ़ और नदी जनित जोखिम में कमी आने की उम्मीद की गई है। महानगर के नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु प्रसाद जोशी ने ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने सामा खुशी से खाड़ी पाखा तक के क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई। जोशी के अनुसार वर्षा ऋतु में होने वाली अन्य जलजनित घटनाओं को कम करने के लिए महानगर पालिका ने जोखिम वाले स्थानों की पहचान कर रणनीतिक योजना भी तैयार की है। उन्होंने बताया कि शहरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व तैयारी, आपदा के समय आवश्यक प्रबंधन तथा आपदा के बाद पुनर्स्थापना कार्यों को ध्यान में रखते हुए वार्ड और समुदाय स्तर पर क्षमता विकास तथा विभिन्न निकायों के बीच समन्वय की योजना बनाई गई है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने कहा कि सरकार बंद पड़े सभी उद्योगों को पुनः संचालन में लाने की तैयारी कर रही है। कभी बंद तो कभी संचालन की स्थिति में से गुजर रहे हेटौड़ा सीमेंट उद्योग का आज निरीक्षण करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने हेटौड़ा सीमेंट उद्योग की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और शीघ्र ही सभी समस्याओं का समाधान कर उद्योग को नियमित संचालन में लाने का वातावरण तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी संबंधी कार्यतालिका को स्वीकृति देते हुए इसकी जानकारी प्रदेश और जिला अध्यक्षों को दी है। पार्टी के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी 15 जेठ तक सभी 70 जिलों और 7 प्रदेशों में निर्वाचन समितियों का गठन पूरा करना होगा। इसी प्रकार 20 जेठ तक स्थानीय और जिला अधिवेशन की रिपोर्ट संकलित करने तथा 30 जेठ तक जिला अधिवेशन एवं निर्वाचन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के उप प्रमुख राम गुरुंग ने जानकारी दी कि 25 जेठ तक महाधिवेशन प्रतिनिधियों की नामावली प्रस्तुत करनी होगी। वहीं आगामी 5 आषाढ़ तक प्रदेश अधिवेशन में निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण और इलेक्ट्रॉनिक मतदान संबंधी चर्चा पूरी की जाएगी। रासोपा ने आगामी 7, 8 और 9 आषाढ़ को चितवन में अपना पहला राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि नागरिकों की विभिन्न समस्याओं और सरोकारों को सरकार क्रमशः संबोधित करती जाएगी। काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 में आज आयोजित सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल ने स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई सड़क, नाली, बिजली और पेयजल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकतम पहल करने की प्रतिबद्धता जताई। उसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद एवं मंत्री पोखरेल ने चुनाव के दौरान प्रत्येक महीने एक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में आज काठमांडू महानगर पालिका 4 स्थित विशाल मिलन केंद्र में पहला सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार के प्रवक्ता भी रहे मंत्री पोखरेल ने स्पष्ट किया कि सरकार जनता की बात सुनकर ही आगे बढ़ने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकताओं

0: गाउँपालिकाद्वारा आज आयोजित बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपसभामुख ठाकुर ने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा केवल मधेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियों को बोझ मानने वाले लैंगिक विभेद की सोच के कारण बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं कायम हैं। मधेश समाज को बेटियों का सम्मान करना सीखना होगा। नेपाल के 3 दिवसीय दौरे पर आई ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक और समानता मंत्री सीमा मल्होत्रा ने कहा है कि ब्रिटेन नेपाल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और तकनीकी शिक्षा के विस्तार में सहयोग करेगा। आज नेपाल ब्रिटेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित नेपाल के लिए ब्रिटेन की शैक्षिक साझेदारी का दायरा विषयक उच्च स्तरीय चर्चा कार्यक्रम में मंत्री मल्होत्रा ने कहा कि नेपाल और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में शिक्षा सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दौरे के दौरान मंत्री मल्होत्रा ने अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल और लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य सहित विभिन्न नेताओं से मुलाकात की। नेपाल के लिए ब्रिटेन के राजदूत रॉब फेन ने जानकारी दी कि इन मुलाकातों में दीर्घकालीन निवेश और बहुक्षेत्रीय सहयोग के विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी ने वरिष्ठ गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठ को विशेष सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है। गुठी का अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न साधारण सभा ने यह निर्णय लिया। गुठी के सचिव दिनेश अधिकारी के अनुसार गीत लेखन की श्रेणी में डॉक्टर नवराज लमसाल, संगीत रचना में किरण कंडेल और गायन में विमला राय को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष का लोकप्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार सारिका घिमरे को देने का भी निर्णय लिया गया है। पुरस्कार और सम्मान समारोह गुठी की संस्थापक तथा गीतकार स्वर्गीय रमोला देवी शाह छिन्नलता की जयंती के अवसर पर आगामी 9 श्रावण को आयोजित किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में चमन फाटक के पास आज रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके की वजह से एक ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए जबकि 2 डिब्बे पलट गए। चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि रेलवे ट्रैक के पास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए जबकि आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। सेना और पुलिस बल हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने अभी तक धमाके की वजह या हताहतों की संख्या के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने क्वेटा में हुए धमाके की कड़ी निंदा की है। रेलवे प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा, क्वेटा कैंट से आने वाली एक शटल ट्रेन चमन फाटक के पास धमाके की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि धमाके की वजह से इंजन समेत 3 डिब्बे पटरी से उतर गए जबकि 2 डिब्बे पलट गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बाजुरा और हुमला जिलों की सीमा संबंधी अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित की समिति। बंद पड़े सभी उद्योगों को फिर से संचालन में लाने की तैयारी में है सरकार, उद्योग मंत्री गौरी कुमारी यादव का कथन। सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कर बनाए गए पोखरा के फिरके नदी क्षेत्र की संरचनाओं को हटाने का अभियान शुरू। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 24 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
2: मनोरञ्जन र विविध जानकारी सँगै यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
3: सार्वजनिक सेवा प्रस